तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।

बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान।

झूठे कसम वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं।

0: The Mataji Aarti on East FM with festive bread. Quality, tasty, fresh bread. Available in shops and supermarkets. Grab yours today.
1: East FM.
2: East FM.
3: East FM. Kenya's premier Asian mix. Bemisaal Andaaz with Parveen Atom.
0: और सैम बुध की सुहानी सुबह है, आपने ट्यून इन कर रखा है अपने रेडियो को ईस्ट एफएम के साथ, आप जुड़े हैं बेमिसाल अंदाज का इंतजार कर रहे हैं आप। तो समझ, आज बतौर मेहमान हम और आप किसी के घर जाएंगे, सवाल उठते हैं, ऑफ कोर्स उठेंगे, तो हम उस सवाल का जवाब भी देंगे। और ये है, मुझे बड़ी तसल्ली है कि इस सवाल का जवाब आप गूगल नहीं कर पाएंगे, ये आपका अपना है, जाती है, पर्सनल है जवाब, और आपने खुद सोच समझ कर भेजना है इसे। दूसरे, आज के दिन के हवाले से, आज का क्या दिन है, 14 अक्टूबर है, तो क्या हुआ था ये मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे। और बस ये है कि हम आपको बता दें कि पहले पहले मैसेजेस आए हैं शब्बीर अहमद और प्यार अली भाटिया के साथ साथ आए, और शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, योर ब्रेन कंटेन्स अबाउट 160,000 किलोमीटर्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। समझ, वो जो धागे होते हैं नर्व फाइबर्स हम बात कर रहे हैं, ये 160,000 किलोमीटर लंबे हों अगर सबको देखा जाए, मिलाया जाए आपके जिस्म में, लॉन्ग इनफ टू रैप अराउंड अर्थ 4 times। ये जो आपके हैं ना न्यूरॉन्स, जो नर्व फाइबर्स हैं समिन, वो तो एक धरती को 4 बार अपनी लपेट में ले लें। बहुत अच्छे शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। भरत गंगाराम, माता जी की बहुत आपको पसंद आई है, जय माता जी की। और रूपल कहती हैं कि गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, मिड वीक विशेज एंड मिड वीक वाइब्स। अमीर अली राणा ने क्या कहा है, पहले एक गाना सुन लेते हैं।

0: वाह वाह क्या बात है लता मंगेशकर की। अमीर अली राना ने आज फ्यूनरल जनाजे पर कुछ लिखा है, किसी ने लिखा होगा, भेजा है। कहते हैं कि द हार्डेस्ट फ्यूनरल इज द वन नोबडी नोज हैपेंड, समथिंग इन मी डाइड दैट डे बट आई एम स्टिल वॉकिंग लाइक आई एम अलाइव, आई डोंट स्माइल द सेम एनी मोर, आई डोंट फील द सेम थिंग्स, पीपल सी माई बॉडी माई फेस माई लाइफ but they never see the part of me that already left. It didn't die loudly. It just quietly disappeared from everything I used to be. Now I exist, but only half of me is here. The other half never came back from that pain. Uff, kya mushkil kavita hai. Lekin, bahut hi khoob. Samin godlike hai. ये ऐसे वैसे ऊट पटांग नहीं लिखा हुआ, बहुत अच्छे अमीर अली राना, आपका शुक्रिया भी अदा करना है अमीर अली राना। अब चलते हैं सलमा अहमद।
1: जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम सलमा अहमद की सुमो।
0: सलमा अहमद कहते हैं दुख में भी कुछ चुकाना पड़ता है कर्ज। चंद्रिका वासन को साइड सुन रही हैं और शुभ प्रभात एमएल विश्वकर्मा ने क्या कहा है, ऑलवेज यूज योर आईज फॉर अपॉर्चुनिटी एंड नॉट फॉर प्रॉब्लम्स, इधर उधर ना ढूंढो समस्याओं को, मवाके ढूंढे अपॉर्चुनिटीज ढूंढिएगा। बहुत अच्छे। और समीन अब चलते हैं ब्रेक ले ले।
2: East FM celebrating your favorite occasion. East FM
3: Kenya's premier
2: Asian mix.
3: Asian mix. It's 10:19.
4: Navratri celebrations are coming your way only on East FM. Join us to every other temple as we will be on the lookout for the best dressed, best dancer and the most energetic person in the crowd. With exciting prizes and hampers for you to win. And the excitement does not stop there. Guess what? Winners from every temple will head to the grand finale at the Lohana Mahajan Mandal on the 19th of October where even bigger prizes await. So dress to impress and bring your best moves and celebrate Navratri with East FM.
5: Let's talk money on East FM with Absa as Onesmas Masvi, head of premier banking at Absa Bank, talks about financial freedom.
6: Many people assume financial freedom means having more money. When it comes to Absa Premier Banking, we do understand that our customers have been able to achieve some sort of financial freedom, but they are yet to meet their goals, their dreams, and that is where we come in as Absa Premier Banking. We partner with you and we're able to help you achieve these dreams and these goals at a personal level, and you're able to meet those particular goals.
5: At Absa, we help you build, grow, and protect wealth through every stage of your journey. Download the Absa Bank Kenya app to open your Absa Premier account today. Absa, your story matters. TNCs apply. Absa Bank Kenya is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Kenya's premier Asian mix continues.
7: We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.

कहीं ये वो तो नहीं। मिस्टर एमएल विश्वकर्मा ने एक बहुत खूबसूरत सवाल आपसे पूछा है, समझ, जिसको हम पोल में तब्दील कर सकते हैं। पोल करेंगे कि अगर 10 लिसनर्स, 20 लिसनर्स, 30 लिसनर्स जवाब देते हैं तो उनके जवाब कैसे, किसको ज्यादा मिलेंगे, ऑप्शन ए को, बी को, सी को, इस तरह से हम करते हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, मैं आपको बताती हूं, पहले एक खबर दे दूं, फिर इसी के साथ एमएल विश्वकर्मा का सवाल जोड़ देंगे। चाइना के समय कितने मसाइल हैं, हर बड़ी बड़ी ताकत के भी मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, माशी यानी इकोनॉमिक होते हैं, सियासी यानी पॉलिटिकल, सोशल हुए, सामाजिक, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज चाइना में बुजुर्गों की है, एल्डरली, ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन, कहा था ना कि दो ही बच्चे होने चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए, ये वो, इतनी कम आबादी होती जा रही, लेकिन बुजुर्ग बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है बुजुर्गों की तन्हाई की। 91 साल यंग, आप सिर्फ ये मिसाल ले लें, 91 ईयर ओल्ड है, उनसे बात कर रहे हैं पत्रकार, कहती हैं उनके शौहर गुजरे तो वो इतनी अकेली पड़ गई कि टेलीविजन से बातें करने लगी, और बाद में क्या करने लगी, बेटे को कॉल किया। ऑफ कोर्स आप जानते हैं क्यों ये ऐसा हो रहा है, लोनलीनेस, बच्चे चले गए हैं मुलाजमत करने, उनको ये पता है कि दिन में एक बार कॉल कर लेनी है, कमाई भी करनी है, तो वो अपने फर्ज से बस हो जाते हैं, समझते हैं कि जिम्मेदारी निभा ली। खैर, उन्होंने कॉल किया अपने बेटे को और कहा कि मुझे डॉक्टर से मिलाओ। डॉक्टर से, जी हाँ, कहती हैं कि मैं खुद डॉक्टर्स की मदद से अपनी जान लेना चाहती हूँ, इसको यूथनेशिया कहते हैं। तो यूथनेशिया तक हालत आ गई 91 ईयर ओल्ड की, आइसोलेशन इस कदर भर रही है चाइना में। चाइना में कई हैं कारण, कारण तो कई हैं, आप जानते भी हैं। अब इस हल के लिए लोनलीनेस इंडस्ट्री जाग गई है। ये लोनलीनेस इंडस्ट्री क्या है, समय कमाई हो रही है, यहाँ ये लोग तन्हा हैं, वहां वो जवान आ रहे हैं कह रहे हैं हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, और वो कर रहे हैं, खाना ले आते हैं उनके लिए, उनको शायद पार्क में ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या सिर्फ बैठकर उनसे बात कर लेते हैं, समझ, ये चाइनीज समाज में हो रहा है। अब मिस्टर एमएल विश्वकर्मा के सवाल की ओर आते हैं, उन्होंने कहा है बुढ़ापे का सहारा कौन, ये सवाल है उन्होंने।

ऑप्शंस दी हैं, बेटा, बेटी या कोई और। आप कह सकते हैं कोई और, आप कह सकते हैं बेटा, आप कह सकते हैं बेटी। ये तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से आपने एक लेनी है और बताना है कि क्यों बुढ़ापे का ये सहारा है। छोटे से दो सेंटेंसेस में आप कह सकते हैं। चलिए 07011061061 ML विश्वकर्मा ने इंडिया से भेजा है ये सवाल।

0: और हरीश वरसानी क्या कहते हैं? हरीश वरसानी कहते हैं, कैसे बताऊं, मेरा मसला तुम नहीं हो। अच्छा, फिर क्या है मसला? मेरा मसला कैसे बताऊं, मेरा मसला तुम नहीं हो। मेरा मसला ये है कि सिर्फ मेरे तुम नहीं हो। क्या बात है हरीश वरसानी। अच्छा, प्ले विद द वर्ड्स सना, बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं अमीर अली राना। ओके, और मे बी आंसर दिया है, मे बी द डॉटर, बिकॉज गर्ल्स हैव मोर एम्पथी फॉर पेरेंट्स देन सन्स। मुझे यही लग रहा था। सो आपका आंसर गर्ल है, बेटी। तो बाकी के क्या कहते हैं? सिमरन, आपने कहा है बुढ़ापे का सहारा, ईस्ट। और मुझे पता है आपने क्यों कहा है सिमरन, ईस्ट एफएम है बुढ़ापे का सहारा। और उमर कहते हैं गुड मॉर्निंग, मैं आपको बताऊं बुढ़ापे का सहारा लाठी है। बेटी है कहते हैं, क्या बात है। जी बेटी। और प्यार अली भाटिया,
1: रविंद्र जी, राह बनी खुद मंजिल, ये गाना फिल्म घोरा का है जिसको हेमंत कुमार ने गाया है और जिसको कैफी आजमी ने लिखा है। ये गाना विश्वजीत पे फिल्माया गया है, उसके साथ ये मूवी में वहीदा रहमान भी थी।
0: क्या बात है, वहीदा रहमान और विश्वजीत। अब देखते हैं कि इटली से थैंक यू, और चलते हैं कल्पना के पास। देर आर टाउनशिप्स इन पुणे, मुंबई, कोयम्बटूर, इंडिया, स्पेशली फॉर द सीनियर्स। कहते हैं जो बुजुर्ग हैं उनके लिए खास छोटे छोटे कस्बे बनाए गए हैं। मोस्ट सीनियर्स पोस्ट रिटायरमेंट आर इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग इन दीज प्रॉपर्टीज वेयर दे हैव कंपनी ऑफ सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल। जी हाँ, मैंने देखा है कितनी मंजिलें ऊंची इमारत है, बड़े बड़े बड़ा गार्डन है वगैरह है, लॉन है, वहाँ तमाम सहूलतें बुजुर्गों को मिलती हैं। 24-hour डॉक्टर सर्विस, ये कहा है कल्पना ने। इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड स्पेशली फॉर देम एंड अदर एक्टिविटीज फॉर देयर एज। कहते बुजुर्गों के लिए जो सड़कें हैं, व्हीलचेयर्स हैं, और जिस तरह के रैंप्स बनाए गए हैं ताकि वो आसानी से चल फिर पाएं। तो ये है बात। अब चलते हैं अगला गाना, फिर मैं आपको अगला मैसेज भी सुना दूं।

0: और समय अब चलते हैं, कहती हैं कल्पना के देखो, जो बुजुर्ग हैं बेटी बेटा नहीं, वो ओल्ड एज जो हैं स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं इनके लिए स्पेशल टाउनशिप्स, तो वहाँ चले जाएं। चलो, पर आपने 1, 2, 3 नहीं किया, बेटा बेटी या कोई और, इन तीनों में से आपने कोई नहीं चूज किया, ये आपकी टाउनशिप शायद कोई और है। और अब देखते हैं कि यहाँ पर बुढ़ापे का सहारा बाटली मेडिसन है, माटली मटका पानी और खाटली बेड क्या बात है। समझ, मेरे लिसनर्स का ह्यूमर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती हैं शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बुढ़ापे का सहारा, एक तो बाटली है मतलब जिसमें दवाई, एक है माटली मटका जिसमें पानी हो, और दूसरा है खाटली। ये तीन ML विश्वकर्मा आपको शामिल करने चाहिए थे, ये तीनों में से देख लेते फिर कौन सा चूज करना है। अब देखिएगा कि अजय पाल ने क्या कहना है।
1: के ऊपर निर्भर करता है, बेटा भी सहारा बन सकता है, बेटी भी सहारा बन सकती है, लेकिन उम्मीद किसी पर ना रखें, अपने आप पर निर्भर करना पड़ेगा। शुक्रिया।
0: मतलब कि नन ऑफ दीज थ्री जो के ऑप्शंस दी हैं ML विश्वकर्मा, इन तीनों में से कोई नहीं। ओके, अब शबीर अहमद, आपने कहा हेमंत सॉन्ग खूब, दैट इज प्लेइंग नाउ, लता और रफीका भी सुपर डुएट, क्या कॉम्पोजिशन है, कमाल है शबीर अहमद।
2: Kenya's premier Asian mix,
3: East FM,
2: is celebrated from South Sea, Parklands to Westlands.
3: East FM,
2: Kenya's premier
3: Asian mix.
4: No one plays more of your Bollywood favorite.

0: बहुत अच्छा किया मैंने ये सुना दिया गाना मिसेस धंजल का फेवरेट है जतिंदर का फेवरेट है अमीर अली राणा का फेवरेट है सबने पसंद किया है जैनुल मोहम्मद आपका भी शायद फेवरेट है आपने भी कॉल किया ग्लैड यू आर ट्यून्ड इन और समय जतिंदर को मैंने कहा तीन ऑप्शंस में से एक लें बेटा बेटी या कोई और तो कहने लगे कि बहू का क्यों नहीं लिखा कई बहुएं इतनी अच्छी हैं जैसे कि हमारी आपने कहा है और कहते हैं कि बहुएं भी तो हो सकती हैं वाह बिल्कुल सही ओके हमने मैंने नहीं एम एल विश्वकर्मा ने बहू का नहीं कहा कोई और में आ जाती होगी बहू
1: प्रवीण जी नमस्कार मेरे हिसाब से आप पूछ रहे हो कि बुढ़ापे का सहारा कौन होता है क्योंकि मैंने रेडियो थोड़ा लेट ट्यून किया तो मेरे हिसाब से ना तो बेटा होता है ना बेटी यानी औलाद तो बुढ़ापे का सहारा तो नहीं कह सकते 50 भी नहीं कह सकते क्योंकि जब तक आप काम करते रहोगे तो औलाद भी आपका साथ देगी आपके पास पैसे होंगे तो औलाद भी आपको पैम्परिंग वाला ही काम करेगी लेकिन बुढ़ापे में दवाइयां भी कहाँ प्रवीण जी काम आती हैं पानी तो चलो प्यास लगी तो पानी तो पीना ही है मेरे हिसाब से अपनेपन की बहुत जरूरत होती है जो भी कोई दूसरा इंसान भी किसी की जो जब आपको पता ना शरीर कई बार कांपने लगता है जब हम ओल्ड पर्सन देखते हैं कोई उसकी कांपती उंगलियों को सहारा दे दे तो वो ही सहारा होता है और जो कोई प्यार से उसके दो शब्द उससे बोल ले और उसकी व्यथा यानी कि जो अपनी वो पीड़ा बताना चाहती है या चाहता है ध्यान से सुन ले तो मेरे हिसाब से वही सहारा होता है मेरे तो यही विचार है अपनेपन की जरूरत होती है रितु गुप्ता
0: जी रितु अब देखें जो चाइना में वो लोग कहते हैं कि और भी देशों में ऐसा होगा कि आप किराए पे ले सकते हैं कंपनी आप किराए पे बेटा ले सकते हैं किराए पे बेटी के आए वो एक घंटा दो घंटा आपके साथ बैठे पर समझ उनको ये तो एक सौदा है इसमें कोई फीलिंग्स का ताल्लुक है ही नहीं तो बुढ़ापे में ऑफकोर्स जैसे कि आपने कहा कि अपनापन चाहिए आपको चाहिए कोई करीब हो जो आपके आपके जज्बात को समझे आपके साथ हमदर्दी करे ओके अब रसीला कहती है गुड मॉर्निंग व्हाट अ सुपर स्टार्ट टू द मिड वीक निगाहें ना फेरो अच्छा सभी को पसंद है अगले हफ्ते फिर सुनाऊंगी कहते हैं आई एम हियरिंग इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यस एज फॉर द पोल मैं कहती हूँ बेटी ओके बेटी के लिए अब तक वोट्स ज्यादा आए हुए हैं देखा जाए तो
2: रविंद्र जी निगाहें ना फेरो चल जाएंगे हम ये गाना फिल्म ब्लैक प्रिंस का है 1959 की मूवी है जिसको मोहम्मद रफ़ी और सुमन कन्यालपुर ने गाया है और जिसको उपेंद्र ने लिखा है और जिसकी धुन दुलाल सेन ने बनाई है ये पुराना गाना सुना
0: और अब देखते हैं कि धीरूभाई लखानी क्या कहते हैं कहते हैं कि प्रवीण जी मंडे से फ्राइडे तक आपके गीतों को सुनकर मैं इतना खुश होता हूँ धीरूभाई लखानी आई एम सो ग्लैड और रोज करते भी हैं मैसेज आप हम बड़े आभारी हैं मिसेस धंजल को पता लग गया है कि मैंने उनके लिए वो गाना सुना है जो हर एक को पसंद आया एंड यू रिमेंबर इट इज माय फेवरेट जी हाँ बिल्कुल मिसेस धंजल अब समन क्या करते हैं कि पोल बेटी है बेटा है कि कोई और है कोई और के लिए कोई वोट नहीं आया

0: Mark these dates, 17th, 18th and 19th October, and get ready for three unforgettable days of culture, devotion and celebration. It's the Jaina Carnival. Get ready for a grand exhibition and Ras Garba in devotion of Tirthankars and Jain greats. Come see the exhibition, Journey to Supreme Happiness. Discover Jain history, enjoy fun-filled games and watch captivating short films. On 17th, 18th and 19th October from 10 a.m. to 5 p.m. Also, as the night falls, dance to the vibrant beats of India's best Ras Garba band on the 17th, 18th and 19th October from 8 p.m. onwards. Dance the night away in devotion of Tirthankars and Jain greats. All happening at Oshwal Center.
1: This advert on East FM is sponsored by Piyush Nisha and late Kantaben Ratilal Shah and family.
2: The team that delivers premium entertainment experiences now presents what history will forever describe as a legendary concert. Fennin and Radio Africa Group presents Neo live in Nairobi for a premium one-night only R&B brunch edition. This multi-Grammy winner, R&B singer and songwriter who sells out in concerts all over the world will be performing all his hits live. Plus, he will be joined by the magnificent global superstars Saul and the Gang, who will serenade the event with their amazing live performances. Don't miss this grand experience as you enjoy good food, great company, and a jaw-dropping live musical experience. Neo, one night only, the R&B brunch edition, together with Saul and the Gang, live in Nairobi on 20th of October at Ulinzi Sports Complex. Visit TicketYetu.com to get your ticket before they run out. Powered by Stanbic Bank. Pay with your Stanbic World Elite credit card and enjoy exclusive cashback rewards, including 5% cashback on gold couple tickets and 10% cashback on platinum tickets.
3: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Mark Gitau.
4: President William Ruto has dismissed Nairobi Senator Edwin Sifuna's Equitable Party, questioning its agenda for the country's development. The president also dismissed Sifuna's presidential ambitions, saying Kenyans are capable of electing leaders who can steer the country's progress.
5: Alienda kulonji chama inaitwa the MP Party. Akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa ba. Mara ya mwisho tulimuona na Kofi Olomide na meza imejaa pombe kali ile ya jina mbili mbili. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wamama wamtimie shilingi.
4: DCP Lydia Bigathi Gachagua has called on President William Ruto to uphold state decorum and stop using abusive language in public. Waiting on X as EPRA prepares to announce monthly fuel prices today, the former DP alleged a plan to hike diesel by 9 shillings and petrol by 12 shillings. Gachagua claims the increase is a political move to fund 2027 campaigns rather than a global market shift. The government will spend 65 million Kenyan shillings to construct Karura Kanyungu Technical Training Institute in Kabete to boost technical and vocational skills development. Deputy President Kithure Kindiki announced during the project inspection visit, adding that a 352-bed capacity hostel will also be built at a cost of 170 million Kenyan shillings.
6: Hii mambo tunafanya kwa ajili ya vijana wetu. Wafanye mahali pa kusoma, wapate skills za kuwasaidia katika maisha, ndio waendelee katika ujenzi wa taifa letu. Na kwa hivyo leo ndio maneno imetuleta hapa.
4: Lawyer Danstan Omari is urging President William Ruto to declare tomorrow October 15 the public holiday in honor of the late former Prime Minister Raila Odinga. Omari says the move would give Kenyans an opportunity to celebrate Raila's legacy and reflect on his contribution to the country. Raila died on October 15th last year.
7: It could be a public holiday to give full force to his contribution. We pass our condolences, but we should celebrate if the president and the cabinet secretary who has power.
4: Kirinyaga Governor Anne Waiguru's chances of becoming Kenya's next deputy president remain slim amid competition from incumbent Kithure Kindiki. Political analyst Herman Manyora says Waiguru's bid depends on President William Ruto's decision to replace Kindiki, adding that she lacks sufficient grassroots support in the Mount Kenya region.
8: In terms of qualifications, she's qualified. Beyond that, when you delve into the politics, then you begin to see how challenging it is. in the arithmetics of the Mount Kenya region. I don't think she features that prominently.
4: That's the news update on East FM.
2: East FM News. East FM, Kenya's premier Asian mix.
9: Bangla Bollywood hits and ballads to sing along with.
10: East FM,
9: Kenya's premier
10: Asian mix.
11: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
12: With Mrs. Patel. Mrs. Patel ne abhi call kiya, kehte uffalla, mujhe samajh nahi aati ye geet kahan se aap dhoond leti hain. Ek to kahan se aur samay kitna lagta hai, kitna waqt lagta hai aise gaane. Aur meri pasand ke tamam gaane aapne suna diye hain pehle ghante mein. Kehte aap to sabko khush karti hain, kitna aashirwad aapko milta hoga. जी हाँ, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मिसेस पटेल कहती है, लेकिन देखो वो गाने वाले चले गए, सभी लता भी चली गई, लेकिन हमारा ये संगीत जिंदा है. बिल्कुल, थैंक यू. मिसेस पटेल ने कहा है कि बेटी, ऑफ कोर्स बुढ़ापे का सहारा बेटी है, और कौन हो सकता है. वाकई कमाल है. और अब एक आवाज सुनते हैं.
13: प्रवीण जी फिर बोल रही हूँ, कई लोग बोलते हैं ना बेटी, परवीन जी 100% नहीं कह सकते. जब तक बेटी की शादी नहीं होती ना, तब तक तो बेटी बहुत बहुत माँ की वो गिड़ा को समझती है. आपको पता है दामाद दूसरे घर का होता है, तो जब बेटी की शादी जो होती है तो क्या पता वो दामाद कहीं कोई होएगा. वो रेयर केस होता है, वो परवीन जी एग्जाम्पल में नहीं आता. तो अगर दामाद को ये अच्छा नहीं लगे तो फिर माँ बाप तो यही सोचते ना, भाई बेटा तो पहले अपना घर देख, अगर वो नहीं पसंद करता तो तुम हमारे लिए तो सेवा ना कर. प्रवीण जी बेड पे ना जब इंसान पड़ जाता है ना, कोई भी कोई किसी का सहारा नहीं बनता. ठीक है उस समय भगवान का नाम तो याद आता है, लेकिन निकलता भी नहीं भगवान का नाम. लोग बोल रहे हैं बेटी बेटी, लेकिन शादी के बाद बेटी भी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, वो भी बेबस हो जाती है, चाहे जॉब भी करती हो. मेरे हिसाब से यही है. बेटा भी ठीक है, आपने औलाद को अच्छे संस्कार दिए हैं तो ठीक है. बेटा बहुएं भी कई बार बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल में नहीं आते. हमारा जब हम छोटे थे हमने तो कभी ये सुना ही नहीं था कि ये ओल्ड होम भी होते हैं. ये तो अभी जो नई जो यंगस्टर न्यू जनरेशन है ना, तो क्योंकि अभी सब जो बच्चे जॉब करते हैं ना, उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो माँ बाप का ध्यान भी रख सके. मैं तो खुद भी देखती रहती हूँ लोगों को, कितने परेशान है यहाँ पे ओल्ड पर्सन. ठीक है केयर टेकर रख देते हैं, डॉक्टर के पास कभी जाओ तो वो काम उन्होंने काम वाली भेजी होती है कि वो ही जाके दिखाए वो ही करे, क्योंकि वो बोलते बच्चों के पास टाइम ही नहीं है. कैसा जमाना आ गया. ऋतु गुप्ता
12: जी, मेरी बात हो रही थी एक बुजुर्ग औरत के साथ, तो वो ठीक नहीं थी कई घंटों के. फिर उन्होंने बेटे को कॉल किया तो फिर बेटे ने बताया कि देखो वो जो नौकरानी रखी हुई है ना नर्स, उसको भेजे फला फला चीजें लेकर आए, और वो लेकर उनमें से एक छोटी सी दवाई भी है वो लेकर आप सो जाएं. और ये तालीम याफ्ता बेटे हैं, 55 साल के होंगे वो कह रहे हैं. खैर जो आपने हकीकत बयान की है वही है. और सलमा आगा की आवाज़ सुनकर दिल खुश हो गया. मीर अली राना बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह. सलमा आगा और वो कहा है सलमा अहमद ने, कहती हूँ बहुत अच्छा लगा. अब दिनेश और शोभना, एवरी चेंजिंग कलर ऑफ लीफ इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी चेंजिंग सिचुएशन ऑफ लाइफ इज मीनिंगफुल, बोथ नीड अ क्लियर विजन. जिंदगी भी कहते हैं कि ना बहुत कुछ सिखाती है आपको, आपने बस देखना है कि खूबसूरती कहाँ है. ब्यूटिफुल एंड इट चेंजेस. और अब ये आया है पैगाम कहाँ से, कल्पना से. कल्पना कहती हैं जब मुझे लगता है कभी कभी बुढ़ापे के बारे में बात सुन सुन के कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, हमारे बच्चे हमें अबैंडन करेंगे, तो क्या ये सोच के डिप्रेस होते हैं. when sometimes everything is going right for them. कहते कभी कभी बुजुर्ग ज्यादा ही सोचने लगते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, बच्चे फर्मा बरदार हैं, काम हो रहा है, खाना मिल रहा है वगैरह वगैरह, पर फिर भी परेशान होते हैं कि क्या हमारे बच्चे हमें छोड़ जाएंगे। ओके, मेजर वांजा, यास्मीन वांजा, बहुत शुक्रिया। एक वॉइस मैसेज थोड़ी देर के बाद, पर अभी फिलहाल जिंदगी पर कुछ कहना है मुकेश ने।

0: अश्विन दोषी क्या ये जो है गीत, क्या ये बैकग्राउंड में है फिल्म में?
1: नहीं, ये मुकेश खुद एक्ट कर रहे हैं फिल्म में।
0: अच्छा,
1: तो सॉन्ग वाली
0: खुद गा रहे हैं?
1: खुद गा रहे हैं, खुद एक्ट भी कर रहे हैं ये फिल्म में।
0: अच्छा,
1: जस्ट फॉर दिस सॉन्ग। ये फिल्म थी, हाँ
0: जी,
1: राज कपूर की फिल्म थी। राज कपूर और नरगिस और प्राण थे उसमें, ये फिल्म में।
0: ओके।
1: और ये मुकेश ये घोड़ा गाड़ी चला रहे हैं। और पीछे राज कपूर वो सफरिंग फ्रॉम टीबी इज जस्ट एलिंग।
0: अच्छा,
1: तो वो गा रहे हैं छोटी सी ये जिंदगानी तेरी, यू नो, related to what is happening to Raj Kapoor.
0: अच्छा अच्छा, गम की कहानी है उनकी।
1: गम, yes, yes, yes, sir. हाँ, में क्या हुआ था परिण जी?
0: हाँ.
1: के originally it was a tragic end.
0: हाँ.
1: के राज कपूर ये टीबी में गुजर जाता है।
0: हाँ.
1: और then Nargis gets married to Pran.
0: अच्छा,
1: लेकिन लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया।
0: Okay.
1: तो एंड चेंज कर दिया।
0: एंड चेंज कर दिया, उसको जिंदा कर दिया।
1: जिंदा कर दिया।
0: अच्छा है, क्योंकि उधर टीबी का इलाज हो सकता था ना।
1: होता था
0: जी।
1: तो फिल्म हिट हो गई।
0: वाह, क्या बात है। ये सिर्फ राज कपूर जान सकते थे कि हिट फॉर्मूला क्या है।
1: या उसको वो जानते थे कि पब्लिक की नर्व किधर है।
0: राइट, बिल्कुल।
1: वो दबा के देख ली तो कि ये नहीं चलेगा,
0: मुझे तो अपने आप को जिंदा रखना है।
1: जिंदा रखना है और प्राण को
0: मार देना है।
1: मार नहीं देना,
0: साइड ट्रैक कर देना।
1: इन दिस फिल्म प्राण एक्टेड एज ए गुड मैन, परवीन जी।
0: अच्छा, ओके।
1: यूजुअली ही वाज अ विलन ना। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था, सभी बहुत पॉपुलर था, सब बहुत वो कमाल के गाने थे। मुकेश और लता थे, लता जी ने गाए थे।
0: अच्छा, ठीक, बहुत अच्छे अश्विन। और समन इसी के साथ हम चलते हैं।

0: So have you ever done something embarrassing just to impress someone? I've got another message here saying that I posted a picture specifically for them to see it and kept checking whether they viewed my story. And towards the end of the evening, finally when he saw my story, I was like, ha, mission accomplished. Well, yehi jo hai na, aajkal hamara jo social media hai, it's become like one of those platform जहाँ पे पहले हम पर्सनली बात कर लिया करते थे या मैसेज कर लिया करते थे या मिल लेते थे, अब सोशल मीडिया बन गया है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जस्ट टू कनेक्ट. इवन दो इन रियल लाइफ यू प्रॉब्ली डोंट वांट टू बी दैट पर्सन और मे बी आर नॉट रेडी टू टेक इट फॉरवर्ड, बट सोशल मीडिया पे सारा कुछ चल रहा होता है. एंड आई टोटली गेट यू व्हाट आई मीन. आई हैव गॉट अनदर मैसेज हियर. I'm trying to see your name. Okay, Manish, you're saying that I tried to act cool while walking past my crush and tripped over absolutely nothing in Diamond Plaza, and that was very, very embarrassing. So you're probably acting cool. Oh my God, what a day. I look great in shades. But I get you. That is actually very cute. So, hota hai, kabhi kabhi insaan, you know, koi aisi situation mein aa jata hai where you want to like look good and, you know, want to put up an act saying that, oh, I know everything kind of a thing. So I guess that makes a huge difference between you and your actual personality. But it is what it is and it's fine. Thank you for sharing. Thank you for contributing on today's Dil Se Keh Do. We get into the next hour of the show. Keep it East FM. You're with Nilufer on Retro to Right. Now it's exactly 2 p.m.
1: East FM. Every brand has a story. The big idea. The exciting new product. The offer your customers will love. The service you've worked hard to build. And when you've got something this good, why not give it a bigger stage? Give your brand the kind of exposure that gets remembered with East FM. Whether you're launching, promoting, growing, or celebrating a new milestone, we'll help you turn your message into something people remember. Advertise with Radio Africa Group. Whether you'd like to advertise on the Star, our digital platforms including Mpasho, and even on air with East FM, call us on 0711-046-200 or email sales@radioafricagroup.co.ke. Your brand has a story. Let's give it the audience it deserves on East FM.
2: Navratri celebrations are coming your way only on East FM. To every other temple, as we will be on the lookout for the best dressed, best dancer, and the most energetic person in the crowd, with exciting prizes and hampers for you to win. And the excitement does not stop there. Guess what? Winners from every temple will head to the grand finale at the Lohana Mahajan Mandal on the 19th of October, where even bigger prizes await. So dress to impress and bring your best moves and celebrate Navratri with East FM.
3: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
4: ईस्ट एफएम पे बुधवार का खबरनामा. पहले खबरों की सुर्खियां. सेनेटर एडविन सिफुना पे राष्ट्रपति का बयान. कशागवा की सलाह सदर विलियम रूटो को. बल्गेरिया की शिकायत रशिया से. मजीद गिरफ्तारियां. चुनावी कमीशन के खिलाफ धरना देने वालों की खबरें तफसील से. सदर विलियम रूटो ने नैरोबी के सेनेटर एडविन सिफुना की इक्विटेबल पार्टी की मजम्मत की है और सवाल उठाया है कि मुल्क की तरक्की के लिए इनका एजेंडा क्या है. राष्ट्रपति ने आपकी सदर बनने की कोशिश को भी मुस्तरद किया. रिगाथी गशागवा ने सदर विलियम रूटो को सलाह दी है कि अपने ओहदे के वकार को ना गिराएं, जनता में ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करें जो एक नेता को शोभा ना दे. गशागवा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर ये अपना चुनावी कैंपेन फंड कर रहे हैं. डेप्यूटी प्रेसिडेंट किथुरे किंडिकी ने जाली शराब बनाने वालों को खबरदार किया है कि गैर कानूनी तिजारत करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, कोई बच नहीं पाएगा. आलमी खबरें. बल्गेरिया के वजीर आजम ने रशिया के राजदूत को तलब करके सवाल उठाया है उन दो बहरी जहाजों का जिन पे ब्लैक सी में ड्रोन्स दागे गए. 11 मुसाफिर लापता हैं, 5 को बचा लिया गया. जहाज यूक्रेन का था. 10 मुसाफिरों की मौत हो गई. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवा कुमार ने दिल्ली की सड़कों पर हो रहे احتجاج में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ गणेश कुमार के इस्तीफे की मांग की 100 विरोध करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए जिनमें पत्रकार महिलाएं और छात्र शामिल हैं बेंगलुरु में प्रोटेस्टर्स पे पुलिस का क्रैकडाउन हुआ शशि थरूर ने मशवरा दिया है चुनावी कमीशन के सरबरा को कि वो खुद हट जाएं वरना ऑपोजिशन इंपीच करने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने कहा है कि इलेक्टोरल रोल से 13 करोड़ से ज्यादा नाम मिटा दिए गए ताकि प्रधान और उनकी पार्टी को फायदा हो ताजा चुनाव का होना लाजमी है अब और अमेरिका के सिक्स फ्लैग्स ओवर जॉर्जिया के रोलर कोस्टर से गिर के 42 साल आदमी का इंतकाल हो गया सिक्स फ्लैग्स के मैजिक माउंटेन अम्यूजमेंट पार्क को 2 हफ्ते कबल बंद भी किया गया था इस तरह के वाके के बाद दर्जनों अमेरिकी जख्मी हुए हैं और पोप लियो को फेफड़ों में कैंसर की तशखीस हो गई है वेटिकन के मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि लंग का छोटा सा हिस्सा सर्जरी के जरिए निकाल दिया गया 71 साल पोप लियो की 90 मिनट की सर्जरी हुई ये थी आज की खबरें मैं हूं परवीन आदम
3: We're deep in the groove now. Retro feels blending perfectly with today's hottest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
0: Nimrat was here in the studio. She's here early and we were just having a little conversation. You know, it's two different generations. Like I'm millennial and she's a Gen Z. It's so nice that we still connect on so many aspects of life. You know, it's like there's such a weird combination and very interesting at the same time. Nimrat is so much like my daughter, her temperament. And I am so much like her mom. Our temperament is similar. So we have so many things to talk about. Anyways, you'll catch up with her 4 p.m. onwards. For now, it's me on Retro to Right Now.